0: यहाँ समावेश हुनेछन् नेपाली गीत संगीत, समसामयिक कुराकानी तथा संक्षिप्त नेपाली समाचार।
1: सुन्न नभुल्नु होला प्रत्येक शुक्रबार साँझ 6:50 देखि प्लानेट एफएम 104.6 मा अथवा इन्टरनेटमा planetaudio.org.nz/hamrochautari।
2: I covered many states.